मिलता के सर दोस्त ने मुझे सीन की पसंद आया उसी जबरदस्त सी ते जितने दोस्त साथ देने सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ते उन सुनो ये सब दोस्तों मस्त आया।

उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आया सी। तो हूँ प्रोग्राम टाइम खत्म हो गया। जितने ने दोस्तों सारा साथ दिया, सब दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा अपना लिंक है, फिर मैं जरूर ज्वाइन करो। तो हूँ इजाजत के साथ अल्लाह सोने वाले दुआएं याद रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तो आखिरी समा दोस्तों से सुनो।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
16: Link FM.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज। सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
3: मैं औरंगजेब चौधरी।
4: मैं असलम भुट्टा।
5: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
6: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
7: मेरा नाम अहमदस करा।
8: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
9: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
10: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक FM 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: 96.7 Link FM.
17: You are listening to Link FM.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?

0: राह की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड,
3: across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Community radio for Sheffield.
17: This is Link FM.
15: News, health, sport, educational programs and much more. Only on Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्करा।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।
2: किसी बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह मेरी शादी में पीछे तो नहीं खड़े रहोगे ना?

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।

0: fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You are listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
8: और हर सूर दिल को छो जाए,
9: वही है Link FM.
10: दिल से आपके साथ
11: Link FM Sheffield.
12: आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज काउंसलर रुखसाना इस्माइल फ्रॉम रोदरम एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एवरी डे पीपल इन आजाद कश्मीर आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मेडिकल केयर। टुगेदर वी कैन हेल्प चेंज दैट। प्लीज जॉइन अस एट द कोर्ट हॉस्पिटल फंडरेजिंग डिनर ऑन संडे 28th ऑफ जून at 5 p.m. at the ASCL New York Stadium, Rotherham. Your support will help provide free, life-saving treatment to those who need it the most. Let's come together and give hope, healing, and transform lives for years to come. Jazakallah.
3: Oh, Sardar Arwal, shahar se kab aaye?
4: Arey aaye kahan hai? Abhi to aa rahe hain. Arey, tum bhool gaye apne Baisakhi ke neota?
3: To phir raaste mein kyun ruk gaye? Gaon kyun nahi pahunche?
4: Arey. क्या बताएं? एक छेद वाला लोटा पंडित मिल गया, लोटा दे गया हाथ में और ले गया थर्मस मेरा। अब वो निपट ले तो आगे को बढ़े।
3: अरे तू इस आफत को भी साथ लेकर आया है?
4: अरे दिलदार भूल जाओ पुरानी बातों को, मैंने सोचा कि त्योहार है। अरे कोयल की तरह गावेगी और तितली की तरह नाचेगी।

0: This is Link FM.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक FM हर लम्हा हर जगह

कर लिया तमाशा, मिल गई खुशी, नहीं जाना तेरे साथ। चला जा यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखा।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नए गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: और व्हाट्सएप नंबर क्या है?
1: व्हाट्सएप का नंबर है 07939849. कुछ करना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, अपने हवाले से बात शेयर करना चाहते हैं तो जरूर हम तक पहुँचिए और हम अपनी खुशी
0: हमने अच्छी अच्छी बातें इस प्रोग्राम में शामिल की हुई हैं और सबक मौज बातें होंगी और कुछ लताइफ भी हैं, आई डोंट नो कि कौन सी हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा जब इफ़दी उनको फेंकेंगी आपकी। मौसम आज बीगा बीगा है, आपने नोट किया है? नहीं
1: और

लगता है कि मैदी हसन साहब या कि वहीद मुराद साहब जो है ना, ये समुद्र के किनारे खड़े थे ताकि उनको झील जैसी आंखें उनको नजर

slow. क्या मजदूरों को मुकम्मल छुट्टी होती है इस दिन के लिए, कोई काम नहीं करता, उनको पे मिलती है उस दिन के?

वैसे अगर मजदूर डे मनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल में तभी मालकान को ये होना चाहिए कि उस दिन बगैर मजदूरी किए हुए

जी राजपूर साहब की एक फिल्म थी शशि कपूर और जीनत अमान ने इसमें काम किया था।

कहते हैं जहाँ ना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक ना रवि पहुँचे ना कवि पहुँचे। मुकेश की सुरीली आवाज़ थी जो राजकुमार ने प्रोड्यूस डायरेक्टर और क्या क्या कुछ भी किया। क्रिएटिव माइंड था राजकुमार।

0: किया है हमारा और इस स्टूडियो में रंगीन ही रंगत फैल चुकी है।
1: जी, साथ हमारा निभाते रहिएगा 07939894।

जी समय आप हमारा साथ दीजिए, दो घंटों का ये प्रोग्राम होता है शेफील्ड के जो खूबसूरत वादी है, इसमें खूबसूरत वादी कहूँगा कि सेवन हिल्स हैं यहाँ पर। और जब कभी आपको वर्जिश का अंदाज़ा हो कि हमने वर्जिश करनी है, तो हर एक हिल पर चढ़ जाइए, यानी 10-15 मील लगते हैं और आपका खून जो है ना वो सर्कल दौड़ करना शुरू कर देगा, तो आपकी सारी स्ट्रेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। इफ्त हमीद।

हालात जरा सा दिल टूटा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन अभी तक दिल टूटा ही नहीं है, तुम्हें शायद कहां से बन जाता। खान साहब से किसी ने पूछा था कि आपके दर्द है आपकी आवाज में और आप दर्दनाक नगमे, गमगीन नगमे, सैड नगमे आप गाते हैं, क्या बात है? कहते हैं मेरा एक बार दिल टूटा था जिससे मैंने ये महसूस किया है कि अब मेरा और कोई इरादा नहीं है, गाने ही गाऊंगा, गमगीन गाने, खुद रोया हूँ और दूसरों को भी रुलाऊंगा। कुमार साहब कह रहे हैं कि मैंने एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर, लिखना क्या जी, अर्ज किया है प्यार की मूर्त देखकर। शशि कपूर साहब ये

हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हैं। सुहाना सफर प्रोग्राम लिंक एफएम से आप सुन रहे हैं, जो कि शेफील्ड से बराह रास्त आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, इफ़्त हमीद और मोहम्मद यासीन। इफ़्त, क्या वाला था कि तो फेफड़े है ना, ये बिल्कुल इनके ख्याल में ये हकूकुल इबाद में आता है, किसी को हंसाना, किसी की किसी के गम को दूर करना।

리슨 투 유 후 인조이 키 영어 왜 아픈 우카 시텀 아자네 바파 예 졸음 나카 예 졸음 나카 लता मंगेशकर गा रही हैं माला सिन्हा के लिए और माला सिन्हा मुखातब हो रही है।

गैरों के थिरकते शाने पर ये हाथ गवारा कैसे करूं, हर बात गवारा है लेकिन ये बात गवारा कैसे करूं। लता मंगेशकर की बहुत ही प्यारी आवाज और शायरी भी कमाल की थी। देखो जी ये जो आजकल मुस्नुई चूजे हैं, चिकन्स हैं, फार्म्स के नहीं हैं, उनको खाते खाते दिल तंग आ गया है। कोई ऐसी रेसिपी बताइए जिससे कोई ऑर्गेनिक हो, जो फील्ड्स में पैदा होती हो, उसको हम इंजॉय करें।

0: ऐसे जब खाएंगे तभी मजा आएगा। एक भी आपकी बात मेरी समझ नहीं है, इतनी लंबी जोड़ी आपने लिस्ट बना दी है, मैंने वो तो समझ गई। अच्छा समय पे ऐसी खिदमत है मलका जहाँ फिल्म की दोरा प्रोड्यूस भी किया था, वही दोरा सा ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से।
1: ये दोरा फिल्म है कि
0: सालगिरह सालगिरह छिन्नी वाला।

0: नाम सितारा
1: सितारा होता वाह
0: माँ में आशिया हमारा
1: वाह वाह क्या
0: दूर से देखते से देखने का हक सिर्फ हमारा
1: होता वाह वाह क्या कहने इस पर के भाई चांद में भी दाग है मगर उसे देखे बिना रहा नहीं जाता वो भी उफ पर है नहीं चांद की जी
0: कि आप लोग हमें कोशिश कर रहे हैं हम तक पहुंचने की तो आपके जो मैसेजेस हैं वो फॉर सम रीजन जो है ना वो हम तक नहीं पहुंचे और वो शायद लाइन में तो शुक्रिया इसके अलावा कैसे साहब आपका मैसेज भी आया

ਕੋਈ ਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਪੀਸੇ ਲਾਉਂ आपने अमेरिका की बात की है, अमेरिका में अगर कोई भी चीज़ हो यानी कि आपने खाना खाया टिप न दें तो जो रेस्टोरेंट मालकान हैं या बैरे वगैरह वो गले पड़ जाते हैं, वहाँ पर टिप देनी लाजमी है। अगर टैक्सी करेंगे तब भी टिप देनी पड़ती है। यहाँ पर मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो आते हैं तो चंद अमेरिकन बैठे हुए जब निकले पाए तो उसने वो पूछ रहा है मैं सम सुन रही कह रहा कि अगर हम टिप ना दें तो आप कुछ गाली वगैरह या हमारे साथ झगड़ा तो नहीं करेंगे। मुझे नहीं करेंगे। एक ताज्जुब की बात है कि आपने क्यों पूछा। कह रहा कि अमेरिका में टिप ना दें पड़ जाते हैं लोग। अब हमें पेशे खिदमत में है, तुम्हारे लिए इस दिल में इतनी मोहब्बत है जितनी इतनी मोहब्बत कौन करेगा। यह है बशीर हुसैन और फिल्म की दर्शन बंगाल के जो हैं ना वो रहमान आर्टिस्ट थे। इस फिल्म को जो है ना ये पाकिस्तान में बनी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी।

और 18-20 स्टोन्स को हमारे जैसे बंदा मोहब्बत करेगा जिसमें आगे चर्बी नहीं है तो फिर क्या नहीं इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों अपने आप को पागल करेंगे, नींद भी जाए, चर्बी भी जाए, खाना भी जाए, सब कुछ जाए, इंडिया दूर ही रखिए हमको।

0: श्रेष्ठ मैं
1: करने वाले के बराबर होते हैं। और कहते हैं कि सहाना जो है ये गुफ्तगू का
0: एक नगमा आया था काफी अर्सा कबल, घर आ जा सोने। अच्छा उसकी आवाज में था
1: जी, बड़ा जमाने का बहुत हिट सॉन्ग था।
0: हाँ क्यों नहीं सुना देते हैं जी, शोक और चंचल आवाज
1: मेरा कांतालिया।

बिल्कुल तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो अब देखना हुआ बादल सुना दिए की फिल्म शर्मिला का गोद पसंद।

0: ピカピカ。え、नंबर तो लगभग वही है। लेकिन आजकल देखे ना बाहर जो है ना ये मौसम खराब है और बादल जो है ना बरस रहे हैं और बिजली चमक रही है, इस वजह से शायद कहीं स्टूडियो में थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ हो रही है।
1: 7142618181 जो है ये हमारा नंबर है और कोशिश करते हैं कि आपसे जो है हम जो

अब समय आपकी खिदमत हम पेश कर रहे हैं, मोहम्मद रफी की है ये आवाज, सदाबहार आवाज। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, खुदा समझा, ये क्या भूल की हमने, तुझे क्या समझा क्या जाना। इसमें जो है ना मोहम्मद रफी जो है ना पत्थर के सनम में लक्ष्मी कंत प्यारे लाल की ये पहली फिल्म थी जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया था। ये असिस्टेंट भी थे इससे पहले चंद फिल्म में। खूबसूरत आवाज मोहम्मद रफी की, वहीदा रहमान और मुमताज मनोज कुमार के।

0: समय अच्छी ये दो घंटों का सफर आपके साथ बहुत ही खुशगवार गुजर रहा है। अब इजाजत चाहते हैं एक नगमा आपको सुनाते हैं, उसके बाद
1: जो आपके प्रोग्राम के हवाले से आपके जो तासुरात थे वो आपने बयान किए।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazirsolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: ए एमओटी वाले है किधर?
7: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकलो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: Link FM Sheffield. Link FM.
1: Assalamualaikum, मैं हनीम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ।
3: Link FM Sheffield.
4: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज काउंसलर रुकसाना इस्माइल फ्रॉम रोदरम. And I have a very important message. Every day, people in Azad Kashmir are in desperate need of medical care. Together, we can help change that. Please join us at the Court Hospital fundraising dinner on Sunday, 28th of June at 5 PM at the ASCL New York Stadium, Rotherham. Your support will help provide free, life-saving treatment to those who need it the most. Let's come together and give hope, healing and transform lives for years to come. Jazakallah. Assalamu alaikum. This is Councillor Ruksana Ismail from Rotherham, and I have a very important.
5: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 01143654454 or 07419-299-729.
6: Nayab's Takeaway in Sheffield
7: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
6: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
7: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
6: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
8: Accident ho gaya rapa rapa.
9: Je hoegi accident fikar na karo. Fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kirae ni gaddi na accident ho gaya hai, te da claim team tusan khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Rotherham te Girdon wale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unhan da phone number hai 0330057100 9 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.

0: name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7
1: Link FM.
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
2: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
3: तो भुगतो।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंक

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your very own community radio station.
16: Link FM.